0: संग रागन की सबै पुत्र रागन के
1: उठार है दस बीस
0: खष्ट राग उन गाए संग रागन तीस सबै पुत्र रागन के
1: उठार
0: है दस बीस
1: वाहे बड़ा रोग है दारू भी इस माह एदी दवाई भी है कोई भी रोग है दारू हुंदी है
0: रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद
1: जेडे मन नु रोग लगे ने ओदी
0: आनंद पाया मेरी माए सतगुर मैं पाया सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार
1: परिया
0: शब्द गावण आईया
1: शब्द गावो हरि के राम जदों असि गुरु दे शब्द दी कमाई करदे आ तां होमे खतम होवा
0: सतगुरु
1: मैं सच्चे पातशाह सानू समझा रहे ने कहिंदे ए जिहड़ी होमे आ वड्डा रोग है जिहदे करके जम्मण मरना बनिया होया होमे दीर्घ रोग है दीर्घ हुंदा वड्डा दारू पी इस माहे कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए फिर गुरु दे शब्द की कमाई करदे ने जिन्ना असी इस गुरबाणी की खोज करांगे जिन्ना असी इस नू समझांगे ओना साडा मन परमात्मा नाल जुड़दा जाऊगा होमे खत्म हुंदी जाऊगी जे असी सिर्फ पढ़दे ही खोज नहीं करदे होमे वधदी जाऊगे फिर बंदा कहिंदा मैं करदा
0: जे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं
1: प्रैक्टिकल है जदों असी कहिंदे आ भी मैं गुरबाणी पढ़ना
0: सच नाम आधार मेरा
1: बोलदे आ आपां
0: जिन भुखा
1: क्योंकि असी बाणी पढ़दे होइए
0: प्रैक्टिकल है
1: भी तुहाडा भी होना वैसे
0: जिन मैं आप दे अंदर देख जदों बाणी दी
1: विचार सदा कुर्बान
0: कीता
1: समझना आपा सारे ने हुंदा गुरु दी बाणी द्वारा जदों आपा गुरबाणी पढ़दे आ की साडा मन
0: शब्द
1: हाजर रहिंदा
0: सच्चा नाम
1: गैर हाजर हो जांदा जे साडा मन गैर हाजर हो गया ऐसे मुख तो बाणी पढ़ी जा रही है
0: शब्द वाजे कला जित कर तहरिया
1: मन किथे चलया गया ते
0: पांच दूत।

है, सर्वंकर है, सर्वपाशीय है, सर्वनाशीय है, करुणा कर है, विश्वंबर है, सर्वभीश्वर है, जगतेश्वर है, अमरा मंडस है, कलखंडस है, परते पर है, करुणा

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फ्रजंत विस्माद पौन विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेड़ विडानी विस्माद

0: जना की वर्तन नाम,
1: संत जना के मन विश्राम,
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन कोट,
0: हर जस करत संत दिन रात,
1: हर हर औकत साधक मात,
0: हर जन कह हर नाम निधान,
1: हर रंजन की नो दान,
0: मन तन रंग रते रंग एक,
1: नानक जन के वेद वेक,
0: हर का नाम जन को मुक्त।

0: तेरे सगल शिंदर ठाके
1: मनसरणी पर ठाकर प्रभ ताके
0: जह प्रसाद तुझको ना पहुँचे
1: मन सास सास सिमरो प्रवियुचे
0: जह प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जह प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: माते सिमरत क्यों आलस की जय
0: जह प्रसाद असब अस्त असवारी
1: माते प्रभु को कबु नाम बिसारी
0: जह प्रसाद बाग मिलक तना
1: राख परोए प्रभु अपने मना
0: जिनते रीमन बांत बनाई
1: उठत बैठत सत से त्याई
0: तिसे त्याई जो एक अलख है
1: नीहा उहा नानक तेरी रखे
0: जह प्रसाद करे

0: कर को तार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: जोत किते न पाई है तारम
0: नानक दिस मिले जिस लिखिया तोर कारम
1: के मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास दसन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास सगे परवान
1: दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सोजी परे
1: सकल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: ऐसा हरख तैसा उस सोग
0: सदा अनंत नहीं वियोग

0: कई कोट पय तीरथ वासी
1: कई कोट मन पर मैं दासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपिसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धारै

0: मन
1: यो गुरका शब्द मने स्थमन
0: यो पखान नाप चढ़ तरे
1: प्राणी गुर चरण लागत निस्तरे
0: यो अंधकार दीपक परगास
1: गुर दर्शन देख मन हुए विगास
0: यो महा अध्यान में मार्ग पावे
1: यो साधु संगत जोत प्रगटावे
0: इन संतन की वाचो दूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बैल लाइये
1: लिखिया पाइये
0: प्रभ देवन हार
1: त्याग से चितार
0: जो कुछ करे सोई सुख मान
1: काहे फिरे अजान
0: कौन बस ताई तेरे संग
1: लट रयो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पत से ती कर जाए
0: फकर तू लेन तो आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: काज अभिमान लियो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाल पीक संत संग चाल
1: अगर त्याग दिखिया जंजाल
0: तन तन कहे सब कोई

0: संत जनाका निर्मल मंत्र
1: आस रखो मन माहे
0: सर्व रोग नानक मिट जाए
1: तन को चार कुंड उठ तावे
0: सो तन हासे वाते पावे
1: बोनित वाच्छे मीत
0: सो सुख साधु संग परीत
1: सो बा को करे पलिकानी
0: सा सो बा पर हर

0: मन बांशत नानक फल पाए।
1: संग न चालस तेरे तना,
0: तू क्या लपटावे मूर्ख मना।
1: सौतमीत कुटुंब अर बनता,
0: इनते को तुम कम संता।
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते को कवन छुटकार।
1: हस्ती रथ असवारी,
0: झूठा डंक झूठ पासारी।

0: श्री राम संग रचन सत वचन साधु सब कहत
1: जो होए सोई सुख माने
0: कर्ण करावन हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बाहर भी योही
0: नानक दर्शन देख सब मोही
1: आप सत किया सब सत
0: इस प्रभ ते सकली उत्पत
1: पावे ता करे विस्तार
0: इस पावे ता एक अंकार
1: लखी न जाए
0: जिस पावे तिस रहे मिलाए
1: कवन कहिए दूर
0: आपे आप आप भरपूर
1: आप जनाए
0: नानक तिस जन आप बुझाए
1: आप वरतारा
0: सर्व नैन आपे खनहारा
1: सामग्री जाका तना
0: आपन जस आप ही सुना
1: गुण जानक खेल बनाया
0: आज्ञाकारी तीनी माया